पूरे के गुण गाओ अष्टपदी, पूरे गुण का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर देख, सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंता, आसनित त्यागो तरंग संत जनांगी तोर मन मंग, आ छोड़ बेनती करो सास संग अग्न सागर तरो, हर तन के पर लिहो भंडार नानक कर पूरे नमस्कार, खेम कुशल सहज आनंद सास संग पच परमानंद, नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद, अमृत सपियो चित चित पा नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दा बोधर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल, सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है धार, उत्तम सलोक साधके वचन अमलीक लाल, एह रत्न सुन कमावत हो तो उदार, आप दया लोक कै निस्तार, सफल जीवन सफलता का समझा कै मन लागा हर रंग, जय जय शब्द नाहद वाजय सुन सुन अंत करी प्रभु गाजय, प्रगट गोपाल महांत कै माथे नान कुदरत न कै साथे, सारन जोग सुन सरनिया कर कृपा पर व्याप मिलाए, मिट गए बैर पे सबरेन अमृत नाम सा संग लैन, सब प्रसन्न पे गुरुदेव पूर्ण हुई सेव की सेव, आल जंजाल बेकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दे प्रवतारी नानक निम ही खेप, हमारी रब की उस करो संत मीत सावधाने का गचित, सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन सहज होत निदान, सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रधान पुरख, प्रकट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान, बान होवे या बन जान हर तन खाट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान, चार पदार्थ कमल प्रकाश सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत्का बेता समदर्शी एक दृष्टेता, ए फल तिस जन

सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी।

जग और न जाहि महानतम में अवतार उजागर आन किया तिनके दुख कोटिक दूर गए मथुरा जिन अमृत नाम पिया एह पदत ते मत चुकै है रे मन भेद विभेद न आन बिया।

बोले सोनिया। सो एक बार फिर तो सारिया संगतां वालों बाबा जी उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां। गुरु साहिब जी कृपा करन इस तरह अपने दरकार दीआं सेवावां लैंदे रहन। सो अज दे विशेष दीवान पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे गुरियाई पुरब की खुशी विसजे ने। पंजवें पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी निम्रता ते सेवा सबर संतोख अते लासानी शहादत दे अद्विती मुजस्मे ने, जिन्हां दे इलाही गुणां नूं वेखदिआं होइआं चौथे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी ने गुरियाई की महान बख्शिश की। गुरियाई की पावन रसम ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी ने निभाई। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज ने अपने गुरियाई काल के दौरान श्री तरन तारण साहब, श्री करतारपुर साहब और छियाटा साहब वर्गे इतिहासक नगर वसाए और लुकाई की भलाई हित सरोवर के खूहों का निर्माण करवाया। सर्बसांझी वालता के प्रतीक सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी की स्थापना, तुरकी बाणी एकत्र करके आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संपादना आदि धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी के उच्चारण किए आप जी की अमृत बाणी बाई अज भी अकाल पुरख वाहगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की सिफत सलाह करती है। भटकते हुए तपते हिरदिया सदीवी शांति बख्शिश करती है। ऐसे दीन दयाल सतगुरों का अज गुरियाई पुरब मनाया जा रहा है। शाम के दीवान के सत्कारयोग भाई साहब भाई प्रतपाल सिंह जी रजाइना जो विशेष तौर पर पहुँच रहे हैं, वो आप संगतान शाम के दीवान 7 बजे तो लैके 9 बजे तक गुरबाणी का कीर्तन सरवण करवाएंगे। सारिया संगतान चरणों में बेनती है कि वध तो वध हाजरी भर के लाह प्राप्त करनी कृपालता करनी। सो समूह संगतान चरणों में नाल ही बेनती है कि अज जो कि एंजक सिख वार मैमोरियल कॉर्नर ग्लैंडवुड पार्क ड्राइव जो कि सारागढ़ी के समूह शहीदों की याद में विशेष समागम हो रहा है, 2 बजे तो लैके 4 बजे तक प्रबंधकों वालों यह प्रोग्राम रखा गया है। पंजाबी हैरीटेज ऑफ आस्ट्रेलिया ते आस्ट्रेलियन सिख एसोसीएशन वालों ये सांझी तौर पर प्रोग्राम रखा गया। सारिया संगतां ने उत्थे भी हाजरी भरनी कृपालता करनी। सो आने वाले दिहाड़े जो गुरु घर विखे मनाए जा रहे हैं, कल नूं श्री गुरु रामदास महाराज जी का ज्योति जोत पुरब है, 17 तरीक नूं संगरांद का पावन दिहाड़ा है, 18 तरीक नूं श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का विआह पुरब, 24 सितंबर दिन वीरवार को श्री गुरु रामदास महाराज जी का गुरगद्दी दिवस है, 26 सितंबर दिन शनिवार को श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज जी का ज्योति जोत पुरब सतगुरों के पावन स्थान पर मनाया जाएगा। सारिया संगतां ने वध तो वध हाजरियां भर के लाह प्राप्त करने की कृपालता करनी। हुण सेवक परिवार वालों 2 बजे तो लैके 4 बजे तक श्री सुखनी साहिब पाठ अते कीर्तन दवाना दीआं सेवावां कीतीआं जा रहीआं ने। आओ बड़े प्यार सत्कार दे नाल सरवण करिए जी भुल्लां चुक्कां दी खिमा। अज दे गुरु के लंगरां दीआं सेवावां ते श्री अखंड पाठ साहिब दीआं सेवावां सरदार शरणजीत सिंह जी, बीबी शरणदीप कौर, बच्ची सुखावी कौर, समुचे परिवार वालों सतगुरों का शुकराना करते हुए पी आर की दात बख्शिश की है। गुरु साहिब जी ने कृपा की है, नवें घर की दात बख्शिश की है। परिवार वालों गुरु साहिब जी का शुकराना किया जा रहा है। महाराज साहब कृपा कर परिवार दिया सेवावान पिटावान दर प्रवान कर अपने दरों करो नाम दान गुरसिखी जीवन बख्शिश करके निहाल कर भुला चुकों की खिमा जी फतेह बुलाओ। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।

संग साय सुहावन चीत जो बैराईता सुप्रीता। बलुआ के गिरे पीतर वसे अंध केल माया रंग रसै दृढ़ कर माने मन है प्रतीत काल न आवे मूढ़ है जीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह। आहो जुगत बिहान कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पै अरदास जियो बन सब तेरे दास तुम मात पिता हम बालक तेरे तुमरी कृपा मैं सो कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत उचे ते उचा भगवंत सबल समग्र तुमरा सूत्र तार तुमरे होए सो आज्ञाकारी तुमरी गत में तुम ही जाने नानक दास दा कुर्बानी श्लोक। दीन हर प्रभ छोट कै लागे आन सवाए नानक कहू न सिरजे बिन नावै पत जाय अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्तु कारण बिखोट कवावे एक पी ना दे दस पी हले ता मूढ़ा का काह करे जिस ठाकुर सिओ नाही चारा ता कहो कीजे सत नमस्कार राजा कै मन लागा प्रभ मीठा सर सुख ताहू मन बूठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया सर थोक नानक तेन पाया अगणत छापनी दे रास खात पीत बरता अण दुलास। अपनी मान कछ बार सारे अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही होवे बौर उसका विश्वास न होवे जिसकी वस्त्र से आगे रखे प्रभ की आगे माने माथे उस ते चौगुन करे निगार नानक ससदा दयाल इनक पात माया कहत सर पर होवत जान नेत। बिरख की छाया स्यो रंग लावे ओ बिनसे ओ मन पछतावे जो दिसै सो चल नहार लपट रहो तै अंध अंधार बटाओ स्यो जो लावे नेता को हाथ न आवे के। मन हर के ना की बीत सुखदाय कर कृपा नानक आप ले लाए मिथ्या तन धन कुटुंब सवाया मिथ्या हमें ममता माया मिथ्या राज लोभ तन मार मिथ्या काम क्रोध बिकराल। मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माय भेख हस्ता मिथ्या त्रोमो अभिमान मिथ्या आप सुपर कर तुगमान। अस्थिर भक्त साध की सरन नानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुन मिथ्या हस्त वरदर कहिर मिथ्या नेत्र वेखत भरत रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर विकार कोतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तानी पर पुकारा मिथ्या बास रेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पये सफल दे नानक हर हर नाम लय बिरथी साखत किया जा साच बिना कह होत सोचा बिरथा नाम बिना तन अंध मुख आवता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन

जनन पिता लोक सुत बनिता, कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संबाही ठाकुर, काही मन पव करिया। उड़े उड़ावे सै कोसा, तिस पाछे बचरे शरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे। मन में है

एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा सब

हमरे दुष्ट सबै तुम काबहो, आप हाथ दै मोहि बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय, सबै रन को वाद संगरिय।

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधुन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पढ़ पढ़ की जाने। जब

जीते बदन श्रेष्ठ सब धारै आप अपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूढ़ उचारत भेदा जाको भेव न पावत भेदा ताको कर पाहन अनुमानत महा मूढ़ कछ भेद न जानत महान देव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पेव आप अपनी बुद्ध है जीती बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयो राव कहीं भूपा अंडज जे रज से तज कीनी उत्पुज खान बाहुर रच दीनी कहूँ फूल राजा हुए बैठा कहूँ सिमट पयो शंकर इकट्ठा शिग्री श्रेष्ठ दिखाए चंपव आजुगाद स्वरूप स्वयं पव

कृपा दृष्ट तन जाहिन हर हो, ताके ताप तनिक मैं हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्व सकैन कोई। एक बार जिन

कृपा करी हम पर जगमाता, ग्रंथ करा पूरन सुब्राता, किलबिक सगल दे को हरता, दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जब पाए दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला। मन बाझत फल पावे सोई, दुख न तिसे व्याप्त कोई अड़ेल। सुने गुंग जो जाहे सुरस न पावे, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रह, हो जो जा की एक बार चौपाई को कह चौपाई। संबत सत्रह है सहस पणिजय, अर्ध सहस पुन तीन कहिजय। भाद्रव सुदी अष्टमी रवारा, तीरस्तद्रव ग्रंथ सुधारा। स्वैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ।

तिन सगली चिंत मिटाई। बाणी तां धन गुरु नानक देव साहिब जीआं दे समें तो ही आउणी आरंभ हो गई सी। जिवें गुरु जी का बचन आउंदा है कि जैसी मैं आवै खसम की बाणी तैसड़ा करी

हलत पलत सवार नानक सतगुर सिख कौ जी नाल समार हो ना फे वडभागी इतना नेड़े गुरु इतना प्रेम करता है बस हुण कमी साडी है बस के चरण शरण गुर एक पेंडा जाए चल सतगुर कोट पेंडा आगे हो ले आपे आके लै जावणगे एक कदम पट्टो सतगुरु जी वाला।

दिन अपने बाप नू तके मार के बाहर कट देता। तू मेरा प्यो नहीं, तू मेरा दुश्मन है। नौ भी किड्डे बोल कबोल बोल दी है। एडिया एडिया उचिया कोठिया ते बड़िया बड़िया कारा खलोतिया ने, ते ए सेठ गेटा दे बार बैठा प्रसादे तो भी मोहताज है। आज पुत्र जिनू एडिया मनता नाल मनिया सी, एक प्रसादा भी देण नू तैयार नहीं। बाबा नंद सिंह जी नानक सर वाले अज इस नगरी विच आए। बाबा जी दी सोभा सुनी ते दीवान लगा होया है। समाप्ति होई ते जाके बाबा जी दे चरण पकड़ ले। बाबा जी मेरे कोलों केड़ियां भुला होया ने, जेड़े पुत्र नू एडियां मनता मन के लिया सी उन्हें धक्के मार के कढ़ दिता है। नौ बोल कबोल बोल दी है। आ जदों अपनी मां नू बच्चे माड़े बोल बोलते ने, ते मेरे तो सुनिया नहीं जाता। किड़ा गुनाह कीता है, किड़े जन्म दी सजा भुगत रहा हां। बाबा जी आखन लगे हुए सेठ ऐसे ही जन्म दी भुगतदा पिया। एक गल दस, पुत्र मंगिया गुरु नानक दे दरबार विचों ते खुशियां किहदे नाल मनाईयां सी? अपनी खुशी विच गुरु नानक नू बुलाया सी? शराबां ते कबाबां दे नाल तू दोस्तां नू मित्रां नू खुश कर सकदा है, गुरु नानक नू खुश नहीं कर सकदा। जिन्ना चिर गुरु नानक नू खुश नहीं करेगा, उन्ना चिर तेरियां खुशियां कच्चियां ही रह जाएंगी, तेरियां खुशियां पक्कियां नहीं होंगियां। तू गुरु नानक नू भुला दिता। बाबा जी दे चरण पकड़ के हंजू केरे, बाबा जी सच ही मैं बड़े गुनाह कीते ने, देण वाले नू भुला दिता है। ते बाबा जी कहिंदे सो क्यों विसरे जिन सब किछ दिया। दोस्त मित्र रिश्तेदार तेनू खुशी वेले सारे याद रह गए, ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज तेनू भुले गया। कदी गुरुद्वारे चक्कर मारिया है, कदी संगत विच गया है, दुख वेले किड़े गेड़े मारदा सी। हंजू केरे, बाबा जी मैनू बख्श देव। ते बाबा जी ने सारी संगत नू बिने कीती भी सारे रल के अरदास करो, इस सेठ दी झोली सुख पै जान। ते संगत अरदास कर देवे क्यों ना खुशियां आ जान। सेवकां नू भेज के इस दे पुत्र ते नूह नू भी बुलाया। बाबा जी ने किन्ना चिर इन्हां नू सिख्या दिती। आखण लगे बच्चिओ, मां ते प्यो रब रूप हुंदे ने। जेड़े माता पिता दी सेवा नहीं करदे उन्हां नाल रब रुस जांदा है। तू अज अपने बापू नू धक्के मारदा है, ते कल नू तेरे पुत्र तेनू धक्के मारनगे। इंज चंगा नहीं, बाप दी सेवा करया कर। आ बाबा जी बचन कर देन ते कौन मोड़ सकदा है। आ सतसंगियो, परी संगत दे विच अपने बापू दे चरण पकड़ ले। नहीं बे, देन वाले नू कदे नहीं पलाना। सब कुछ उसदा दिता होया है, सारियां रहमतां उसदियां दित्तियां होईयां ने। ते साडा किड़ा चंद्रा सवा है। आपां जांदे हां ना गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी, ते नमस्कार करन वास्ते जदों अपना पर्स कढ़दे हां, सब तों पहलां तकदे हां बई फटिया नोट केड़ा है। जे फटिया नहीं ते सब तों छोटा नोट केड़ा है। बेशक गुरु साडे पैसे दा भुखा नहीं, पर गुरमुखा ओ प्यार दा भुखा है। तेरा किहो जिहा प्यार है, गुरु लई छोटे ते फटे नोट टोलदा है। नहीं बई, सारा कुछ उसदा दिता होया है। कदों खुशियां आउणियां ने,
जदों सचमुच ही अंदरों आखेंगा सतगुरु मेरा मुझमें

तेरा है, मेरा कुछ नहीं। आपा तकिया है साडा किहो जिहा सुभा है, घर विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश भी है, ते उसे घर दे विच शराबां ते कबाबां भी है। नहीं बई, तू गुरु की नरादरी करदा है, सारा कुछ देण वाला ते ओ है। अपने कमरे वड्डे वड्डे, अपने कमरे विच सोहणे गलीचे ते वड्डे कमरे, ते गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश पौड़ियां थले छोटे छोटे कमरे विच कर देता है। बाबा ईसर सिंह जी नानक सर वाले बख्शिश करदे सन, ये सचमुच गुरु नानक है, कोई मेरिया अखां नाल तक लवे, साडियां नजरां विच फर्क है। जे ये कुछ करदे हां प्रगट गुरां की देह करके नहीं मनदे। ओए गुरु सिखा, खुशियां ते तेरे

तेरे घर दे अगे गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सवारी लंघनी है। ते बाबा जी कहिंदे सन सारी गली विच झाड़ू ला दे, लोकां नूं पता लग जावे कि अज इस दे मालक ने लंघना है, अज इस दे गुरु ने लंघना है। ऐवें उपरों उपरों आखी जांदा है वी सारा कुछ तेरा है। आ संसार विच तको घरां विच कोई समागम है ना, ते जदों बाजार कपड़े लैण जांदे हां अपने वास्ते हजारां रुपईयां दे कोट पेंट, ते गुरु वास्ते ये दुकानदार नूं की आखदा है भी कोई 51 रुपईयां दा रुमाला गुरु वास्ते दे दे। ओए गुरसिखा की तेरी भावना नूं होया है, जिन्हें तेनू सारा कुछ दिता उहदे बदले जदों तू रुमाला वस्त्र खरीदने ने उदों क्यों जेब कुटदा है, उदों क्यों सरफे ते उतर आया है। नहीं बे, दिलों आख मनो आख सतगुरु सारा कुछ तेरा है, मेरा इस विच

सोदर के हा सो कर के हा जित बै सर्व समाले किते राग प्रेस्यो कहियन किते गावन हारे गावे चित गुप्त लिख जाने हैं लिख लिख धर्म विचारे गावे इंदासन बैठे देवत्या दर नाले गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पया।

आदेश सह आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची।

0: भगवती शांत है प्रसाद कथते क्या च जदे से क्या बिज पैसे क्या बिज लोक के आदित शोक है
1: के
0: राज प्रभा है कि धर्म तुझा है
1: की
0: के जतन करती है के शत्रंग क्षत्रि है
1: स्वरूप
0: के अंत

0: अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे
1: समस्त स्वरूप
0: कुकर्मन परनासी सुधर्मन बेपूते
1: सच्चिदानंद सतरंग पनासी।

0: सुर सुरादन सुत सुदायक मती के
1: सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखिए प्राणपति के
0: श्री भगवान की पाई कृपा होते एक रति बिन एक रति के
1: माध्यम तंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सवारे
0: कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे
1: हरिप जान के

0: जान के सुंदर हिंसती है राज हजारे
1: विक भगवान के भूपद कौन गने नहीं जात बिचारे
0: श्रीपद श्री भगवान पजे बिन अंत को अंत के ताम सिदारे
1: तीर्थ नान दया दम दान संजम ने मन एक विषय
0: वेद पुराण कते कुरान जमीन जबान स

0: तोर दे समलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया
1: ग्रान को तोड़न हासु बातन ही चक चार लवैया
2: साहिब श्री सब को सिर नायक।

0: चरण हृदय त्याय अंतर आत्मे संभाले।
1: आप छठ सदा रे परणे गुरु बिन अवर न जाने कोई।
0: कह नानक सुनो संतो सो सिख सन्मुख होए।
1: जे को गुरु तेवे मुख होवे बिन सतगुर मुक्त ना पावे।
0: कोई पूछो विवेकिया जाए।
1: अनेक जूनी भरमा वे बिन सतगुर मुक्त ना पाए।
0: मुक्त पाए लाग चरनी सतगुर शब्द सुनाए।
1: कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त ना पाए।
0: गावो सिख सतगुरु के प्यारियो गावो सच्ची बाणी।
1: बाणी दा गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी।
0: जिनको नदर कर्म होवे हृदय तिना समाणी।
1: पियो अमृत सदारो हरन जपियो सारंग पाणी।
0: कहे नानक सदा गावो एह सच्ची बाणी।
1: सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी।
0: बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी।
1: कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आग बखानी।
0: हर हर नित करे रसना कहा कछु ना जानी।
1: चेत जिनका हिरलिया माया बोलन पैर वाणी।
0: कह नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी।
1: गुर का शब्द रतन है हीरे जे जड़ाओ।
0: शब्द रतन जिन मन लागा ए हुआ समाओ।
1: शब्द से ती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ।
0: आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए।
1: कहे नानक शब्द रतन है हीरा जे जड़ाओ।
0: शिव शक्त आप उपाय के करता आपे हुक्म वरताए।
1: हुक्म वरताए आप वे कह गुरमुख किसे बुझाए।
0: तोड़े बंधन होवे मुक्त शब्द मन वसाए।
1: गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक सो लिवलाए।
0: कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए।
1: सिमर शास्त्र पन पाप विचार दे तते सार न जानी।
0: तते सार न जानी गुरु बाजो।

0: काल करे सो क्यों मनो विसारिय,
1: मनो क्यों विसारिय, वरदाता जे अगर मैं हार पहुंचावे।
0: कोई न सकी जिसनु अपनी लिव लावे,
1: अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिए।
0: नानक ए वरदाता सो क्यों मनो विसारिय,
1: जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया,
0: माया अगन सब इको जही करते खेल रचाया,
1: जात इस पाणा ता जम्या परवार पला पाया,
0: माया अमर वर्ताया,
1: ए माया जिधर विसरे मोह बुझे भव दूजा लाया,
0: नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया,
1: हरे आप मुलक है मुल्ला पाया जाए,
0: ना पाया जाए किसे विटो रहे लोक विलाए,
1: ऐसा सतगुर जे मिला तिसनु सिर सौपिए विचो आप जाए,
0: जिओ तिस मिल रहे हर वसे मन आए,
1: हरे

0: की बार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याय कै हो हरिया पाई
1: काम लिखन ते पाई रुत सुहाई
0: मंत्रिन त्रिपवन मौल्या अमृत फल पाई
1: मेरे साधु सुख उपजै लथी सब छाई
0: नानक सिमरै एक नाम फिर बौर न ताई
2: पंजे पदे महाबली कर सच्चा टोआ
0: अपने चरण ज पाई।

ठाकुर तुम पैर दास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुम्हारी कृपा में कोई न जाने तुमरा ऊंचे ते ऊंचा पग। सगल समग्री तुमरे सुतरता, तुम ते हो ऐसा

हम अवगुण पर एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै पुले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास पाठ कीरत की

प्रिय अहनिस सहज सुभाय दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाय हुवै सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों जटी है तुद दिठी सच्ची पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहंद साहो जिस पास बैठिया सुही है सब नांदा विसाहो सतनाम

उम्र मना जाना, जब ही सन गई जब ही सन आयो, जब ही संसाध की आयो दुर्ब सकल बनासी, तब ना चेतो चिंता मन काटी जम की फांसी, सूठ मैला नावा रे नर ए साची जी धार, सगल जगत सगल जगत सगल जगत है जैसे सपना, मृष्ण लगत न बार रहाओ बारू पीत बनाई रच पच, रहत नहीं दिन चार तैसे इश्क माया कै उर्जो कहाँ गवार, अजू सन कछ बिगड़ो नाहन भजन नाम अमर आर, कौ नानक निज बत साधन कौ पाख तुहे पुकार, सोठ महला नावा ये जग मीत न देखो कोई, सगल जगत अपने सुख लाग्यो दुख में संग न होई रहाओ, दारा मीत पूसन बंदी सगले तन सुन लागे, जब ही नृत आयो नर को संग शार सा पागे, कहो कहें जय मन बौरे को इनस्यो निह लगायो, दीनार्थ सगल पै पंजन जसता को बिसरायो, स्वान पूछो पयो न सुधो बोर जतन मैं कीनो, नानक राज बिरद की राखो नाम त्योहार वो लीनो, सोठ मेला नावा मारे गहन गोरे उपदेश कंप जब मुंड मुंडायो पंगो कीनो, भेस रहाओ साच छाड़ के झूठे लागेओ, जन्म अकार्थ खोयो कर प्रपंच उदर निष्पुखेओ, पसकी न्यायी सोयो राम भजन की गत नहीं जानी, माया हाथ बेकाना उर्ज रहो बिख्या संग बौरा, नाम रतन बिसराना रहो अचेत चेत्यो गोविंद, बिरता औध सरानी कौ नानक बिरद पछानो, भूले सदा पुराणी सोठ मैला नावा, जो नर दुख में दुख नहीं माने सुख स्ने अर्पै नहीं जाके, कंचन माटी माने रहाओ न निंदिया न उस्तर जाके, रोबो अभिमाना हर सुते रहे नरारो, नहीं मान अपमाना आसा मनसा सगल त्यागे, जगते रहे निराशा काम को जे पर से नाहन, ते कट ब्रह्म निवासा गुर कृपा जे नर को कीनी, ते ए पेशानी नानक लीन पयो गोबिंद सिंह, जो पानी संग पानी सूठ मैला नावा, पीतम जान लेव मन माही आपने सुख से जग फा देव, को काहूँ को नाही रहाओ, सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चहूँ दस घेरे, वृत परि सब संसारत को न आवत नेरे, कर की नार बहुत जास्यों सदा रहत संग लागे, जब ही हंसती एक आया पेत पेत कर भागे, ए विद को व्यवहार बनयो है जासो नेह लगायो, अंत बार नानक बिन हार जी को काम न आयो, सोठ मैला पहला कर पहला चौ अष्टपदियाँ, चौथ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दुविधा न पढ़ो हर बिन हो न पूजो मड़े मसान, दुविधा पढ़ो न हर बिन पढ़ो मैं पूजो मड़ी मसान, जाई तिसा राचना पर कर जावा तिसा नाम बजाई, कर पीत कर गुरु दिखाया सद ते मन पाई, तू आपे दाना आपे बीना तू देवे मत साई, मन बराग रतो बेरागी शब्द मन विद्या मेरी पाई, अंतर जोत निरंतर बाणी साचे सहज सुन लिव लाई, रहाओ असंख्य बरागे करे बराग जसो बरागे खसमे पावे, हृदय सदा पैरचया गुर की कार कमावे, एको चेते मनवा डोले तातवर ज रहावे, सजे माता सदा रंगराता सचे ही साचे ते के गुणगावे, मनवा पौन बिन सुखवासी नाव से सुख पाए, जेवा नित सु सचराते जल बुझे तुझे बजाए, आस नास रहे बेरा।